0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
0: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our रेडियो।
4: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: कहां से लाई हो जान।

0: है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
4: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Packed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
0: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

0: Leica Gold
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
2: ताज़ा करें अपनी यादें Leica Gold के साथ।

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

सुनिए हाथ वैसगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पिछ।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब, नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश दिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोलख होवें, लख होवें लखवीस, लख

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: Bansmati Rice. Disha Basmati Rice available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati
1: Rice. बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
5: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
6: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1 मई।
7: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: Deep Raja, waking you up every weekend. Like her.

0: कभी कभी।
1: साहिर लुधियानवी की लिखी हुई ये गाना था, ये बोल थे, ये कविता थी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और इस लाइन के बाद उन्होंने आगे भी लिखा था, यानी कि जिसे मोहब्बत मिल जाती है शायद वो यही कहता होगा कि मिले तो जैसे कोई दुआ मिल गई, वीरान से रास्तों को दिशा मिल गई, यूं तो मिलते हैं लोग हर मोड़ पर यहाँ, पर जिसे ढूंढा था वही वफा मिल गई। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था, इस कविता को लिखा था, और इन गीतों को लिखने के लिए, इस फिल्म के गीतों को लिखने के लिए उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का नॉमिनेशन भी मिला था फिल्म फेयर का। आंखें फिल्म से लिया था ये गाना, जो रामानंद सागर ने बनाई थी, माला सिन्हा और धर्मेंद्र की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, और उससे पहले शराबी फिल्म का गीत, बप्पी दा का म्यूजिक। इंतहा हो गई इंतजार की, लीजिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, ऋतु शर्मा स्टूडियो में हाजिर है आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, और जहां भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी का स्वागत है इस शो में, सभी का वेलकम है इस शो में। ये है लाइका रेडियो नेटवर्क, जिसे आप सुनते हैं लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन पर, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती है और सभी सुनने वालों को कहती है प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। संडे का दिन है, आज है 3 मई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? मौसम में थोड़े बादल छा गए हैं, बट इट्स नॉट दैट बैड, जैसा मुझे लग रहा था कि वापस से ठंडी हवा आ जाएगी, यू नो गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेचर ठीक है, अच्छा है, और बस मज़े करो, जो कर रहे हो करते रहो और हमारा साथ देते रहो।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: तो मैं आपको बताती हूँ कि आज करेंसी अपडेट्स मैं आपको दूंगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा डाउन हो गया है. तो थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ करेंसी अपडेट आज के क्या है.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
0: Pakistan cricket score updates. Brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच है वो है हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जालमी के बीच में, और ये मैच शुरू होगा दोपहर के 4 बजे से. और मैच का हाल हम आपको बताएंगे. आप हमारा साथ देते रहिए.
0: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: This is Like a Gold.

0: इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और आर डी बर्मन ने। क्या खूबसूरत धुन बनाई है, कुछ ट्रेन जैसा म्यूजिक यूज किया है जो इस गाने की धुन को और सुंदर बनाता है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिन भी गानों में जो गाने ट्रेन पर पिक्चराइज किए गए हैं सारे के सारे बड़े ही खूबसूरत है। और ऐसा ही ये गीत था जिसे आप सबने पसंद किया है, जिसे मैंने लिया था फिल्म अजनबी से, जिसमें राजेश खन्ना और साथ में थी जीना दमान। और आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं, तो चलिए एक नजर डाल लें उन पर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए, हमारे कुछ रेगुलर लिसनर हैं जो बड़े ही प्यार के साथ हमेशा ही साथ देते हैं, सो थैंक यू कहना चाहते हैं हंसा जी को, हरीश रुदा जी को, रुकैया जी को। ये गाना बड़ा अच्छा लगा, आपको डेडिकेट किया। नरेश जी कहते हैं, क्या ये गाना आप मेरी लेट वाइफ जिनका नाम है दक्षा जी, उनको डेडिकेट कर सकती हैं? बिल्कुल किया नरेश जी आपकी ओर से। प्रज्ञा, स्वागत है आपका, उल्लास टोरंटो में है। हमारे साथ हैं हरीश खत्री जी, क्या बात है, वियाना में अनिल सोनी जी सुन रहे हैं। जयंत एंड मीना जी साथ दे रहे हैं, संध्या भावसर हैं हमारे साथ। सटन से विजय गुरूरी जी जुड़े हैं और कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। फरीदा जी स्वागत है आपका, मिसेस शेख, मृदु जी, हैरो से महेंद्र बजारिया जी, स्लाव से सुरजीत जी, कैंट से सलमा जी, क्रॉइडन से महेंद्र जी, हिमांशु पटेल, विनोद जी, अर्जुन जी, और ये है हमारी वैंकूवर वाली हरप्रीत, थैंक यू, स्वागत है आपका। प्रथा हमें सुन रही हैं, थैंक यू प्रथा आपके मैसेज के लिए। नॉर्थ होल्ट में प्रकाश जी हैं हमारे साथ, थैंक यू। आप सभी के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, तो बस ऐसे करते हैं अगला गीत आप सभी को डेडिकेट करते हैं। और ये गाना आपको काफ़ी पीछे ले जाने वाला है, नरगिस जी की फिल्म से लिया है मैंने ये गाना। और उसका कारण है कि आज नरगिस जी इस दुनिया को छोड़कर गई थी, बहुत ही छोटी सी उम्र में, सिर्फ 51 ईयर्स की एज में, बीमारी के चलते नरगिस जी का आज ही के दिन 3 मई को देहांत हुआ था। अगला गीत उन्हीं की फिल्म से लिया है, मन्ना दा और लता जी की आवाजों में, आप सबके लिए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: चोरी चोरी फिल्म से था ये गाना, शंकर जयकिशन का म्यूजिक और राज कपूर नरगिस की फिल्म। आज आपको बता दें कि नरगिस जी की आज पुण्यतिथि है, आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गई थी। और हमारी जैस जी कहती हैं कि नरगिस जी के गाने ज़रा कम सुनने को मिलते हैं, क्योंकि नरगिस जी ने ज़्यादातर 40s और 50s की फिल्मों में काम किया था, जो गीत हम कम बजाते हैं, लेकिन विंटेज गोल्ड में आप उन गीतों को सुन सकते हैं और सुन पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज क्योंकि नरगिस जी की पुण्यतिथि है, इसलिए सोचा क्यों ना आज जोड़ी नंबर वन में उन्हीं को लेकर आया जाए। और उनके साथ कौन हो सकते हैं, सोचिए कितना आसान है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में सिर्फ एक ही इंसान के साथ की हैं और उनका नाम है राज कपूर। तो आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है नरगिस जी और राज कपूर की जोड़ी, जिनके कुछ गाने सुनवाऊंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाई मृदु जी, आपका गार्डन तो फूलों से बिल्कुल भर गया है, और ये कि आपने बोगनविलिया लगाई है या गुलाब है, ओ माई गॉड, इस समय तो मेरे भी गुलाब कलियों से भरा हुआ है, और आई थिंक मुझे लगता है 10-12 दिन में सारी कलियाँ खिल जाएंगी और गुलाब के फूलों में पत्तों की जगह सिर्फ फूल नज़र आएंगे। और यहाँ के जो गुलाब होता है, इंग्लिश गुलाब, कमाल है, बहुत सुंदर लग रहा है आपका गार्डन। और आपने आज एक बहुत अच्छी सी बात भी हमारे साथ शेयर की है, कहती हैं धैर्य रखो, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य रखो, समय सबका हिसाब करता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, बस वक्त आने दो, क्योंकि कर्म की किताब में हर पन्ना साफ साफ लिखा जाता है। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी धैर्य टूट जाता है और लगता है कब आएगा वो समय, कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा, होता है ना ऐसा, लगता है ना ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू नरेंद्र भागिया जी हमारे साथ है, भरत जी हमारे साथ है, शर्फून कहती है रितु मैं भी हूँ आपके साथ, स्वागत है शर्फून आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब हमने आपको 50s का गीत सुनाया, अब सीधे 90s की ओर लेकर चलते हैं। भैया आपको पता है कि कुमार सानू लंदन आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
4: Ritu Sharma live on Leica Gold Greater London. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Fever Tree Ginger Beer. There's no one quite like you, is there? That fiery character. Warming undertones. Mixed, you make a spirited Moscow Mule. But even on your own, you still have the most delectable kick. Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
4: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।

0: Disha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati Rice. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
1: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी
2: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
1: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज
3: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे
1: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई इन सिनेमास नियर यू
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन
5: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208907244 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244
1: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
6: બીએપીએસ મંદિર નો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
1: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ
6: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
1: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
6: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
1: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
6: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
7: સતગુરુ નાનક સાડે 10વે ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી મહારાજ દા પવિત્ર જન્મ સ્થાન તખત શ્રી હરમિંદર જી પટના સાહેબ દે लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
8: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall, with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: नदीम शमन के म्यूजिक पर सपने साजन के फिल्म से था ये गाना, जिसमें अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें आपने सुनी। और आपको बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें कि कुमार सानू लंदन आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और उनका कॉन्सर्ट होने जा रहा है मंडे 25 मई को, जो कि बैंक हॉलीडे मंडे है, एट रॉयल एल्बर्ट हॉल। और आप टिकट बुक करा सकते हैं टिकट मास्टर यूके पर जाकर। और इस गाने को हमारे बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। थैंक यू मिसेस शेख आपके मैसेज के लिए, थैंक यू। ये है हमारी कौन, वैंकूवर वाली हरप्रीत, थैंक यू। सीमा हयाती आप हमारे साथ हैं, मैं आपको सीमा बोलती हूँ और आपने अपना नाम लिखा है SIMA, सीमा। तो आपका नाम सीमा है या सीमा है, तो आपका भी स्वागत है, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू। थैंक यू जितने भी साथी मेरा साथ देते जा रहे हैं। राजेश जी आपका भी स्वागत है शो में, आप भी हमारे साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला गीत कौन सा होने वाला है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 1.3 US डॉलर्स, 128 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: तो गोल्ड रेट आज हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनकी जो वेबसाइट है मेंटेनेंस के लिए डाउन है। जैसे ही हमें अपडेट्स पता चलेंगे हम आपको जरूर बताएंगे।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच है और ये मैच शुरू होगा दोपहर के 11 बजे से, यानी कि थोड़ी ही देर बाद। मैच का हल हम आपको बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 02085748410।
11: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो।
14: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
15: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
16: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough or visit kfurniture.co.uk.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
18: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
19: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जैमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
18: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जैमिन्स पोटैटो चिप्स।
19: जैमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
20: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
21: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के म्यूजिक पर ये गाना प्रेम गीत फिल्म से लिया था, जो कि 80s के दौर में आई थी, 81 में आई थी, और फिल्म के गाने और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और इस फिल्म में राज बब्बर को, अनीता राज को बहुत पसंद किया गया था और लोगों को लग रहा था कि राज बब्बर एक बड़े स्टार बनेंगे आगे चलकर, और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी मिली। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ बड़े नाम वाले लोगों ने उन्हें उन अच्छे बैनर की फिल्मों से निकलवा दिया और खुद अपने नाम वो फिल्में कर ली। और ऐसा अक्सर होता है, कुछ बड़े नाम वाले लोग छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं हैं और हटवा देते हैं, और इस तरह से अच्छे टैलेंट को वो मौका नहीं मिल पाता है जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन दुनिया की रीत है, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे उनमें कुछ हो या ना हो। लेकिन इस बात को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखिए, जिसे चमकना होता है वो चमक कर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। आपने खबर सुनी होगी, आजकल न्यूज़ पर बहुत छाई हुई है कि एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 7 साल का बच्चा, रांची का, जिनका नाम है मास्टर ईशांक, जिन्होंने भारत श्रीलंका के बीच स्थित दुर्गम पाक स्ट्रेट को तैर कर पार किया और इतिहास रच दिया। लगभग 29 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 9 घंटे 50 मिनट तक लगातार तैर कर, यानी कि स्विम करके पूरी की, और ये एक बहुत बड़ी बात है। 7 साल के बच्चे ने लगभग 10 घंटे तक समुद्र में स्विमिंग किया, और मैं तो सोच भी नहीं सकती। और इसके बाद उनका भव्य स्वागत भी किया गया। समुद्र की तेज धाराओं, ऊंची लहरों और कठिन मौसम जैसी चुनौतियों के बावजूद ईशांक ने अद्भुत साहस और धैर्य दिखाया है, और इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये काम, ऐसे काम, ये दिखाते हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कभी आप सोच सकते थे कि 29 किलोमीटर कोई स्विम करके जा सकता है? बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा, बाप रे, ये काम कैसे कर दिया उस छोटे से बच्चे ने। लेकिन कुछ हुनरमंद लोग होते हैं जिन्हें जो करना होता वो कर होता है, और किसी के अच्छाई को, किसी के हुनर को कोई रोक नहीं सकता। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं नरगिस जी की, क्योंकि आज नरगिस जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गई थी, और इसीलिए आज जोड़ी नंबर 1 में आपको सुनवाने वाली हूँ नरगिस जी के गाने। SBI UK

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो वन पाउंड के बदले में आपको मिल सकते हैं आज 128 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
0: Pakistan cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो आज पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच है लाहौर में, जो कि हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जालमी के बीच में होगा. और ये मैच शुरू होगा दोपहर के 4 बजे से. मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए.
0: पाकिस्तान क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai.
4: Laika Gold.
3: Laika Gold.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me.
7: Southall Travel, at all protected.

0: अपने जमाने का क्लासिक गाना श्री 420 फिल्म से लिया था ये गीत, राज कपूर और नरगिस की फिल्म। और आज ये नरगिस जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 3 मई 1981 को जब उनकी एज 51 ईयर्स की थी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और इसीलिए आज हमने उन्हें जोड़ी नंबर वन में लेकर आया है। आपको बता दें कि वैसे तो उनकी बर्थडे जून में आती है। कोलकाता में वो पैदा हुई थी, और जब उनकी पैदा हुई थी उनका असली नाम था कनीज फातिमा राशिद, लेकिन बॉलीवुड में वो नरगिस के नाम से आई। उनकी माँ जद्दन बाई एक प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर थी, प्रोड्यूसर थी, फिल्म प्रोड्यूस किया करती थी, और इसी कारण फिल्मी बैकग्राउंड के चलते नरगिस जी का हमेशा ही रुझान कला के लिए था। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में 1935 में एक फिल्म में एज ए बाल कलाकार काम किया, और उस समय उन्हें बेबी नरगिस के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में वो हीरोइन बनकर आई। 1943 में उनकी पहली फिल्म आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट जोड़ी उनकी जमी राज कपूर के साथ। और आपको बता दें कि ऐसी जोड़ी जमी कि लोग उनके बारे में बहुत बातें करते थे। कहा जाता है कि बॉलीवुड की जितनी भी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां हैं उसमें से एक प्रेम कहानी शायद राज कपूर और नरगिस की भी थी, लेकिन दोनों ने ये रिश्ता कभी जग जाहिर नहीं किया। शायद मन ही मन में प्यार रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि नरगिस जी को सफ़ेद रंग से बहुत लगाव था, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन इसके पीछे हाथ जानते हैं राज कपूर का था। कहा जाता है कि राज कपूर को सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, और वो चाहते थे कि नरगिस हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने। नरगिस जी ने उनकी इस पसंद को इस कदर अपनाया कि वो उनकी पहचान बन गई, और कहने वाले कहते हैं कि उनके निधन के बाद उनकी अंतिम विदाई भी उनकी इच्छा के अनुसार सफ़ेद साड़ी में ही की गई थी। जब राज कपूर नरगिस से मिले थे तो वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। अगर शादीशुदा नहीं होते तो शायद ये जोड़ी रियल लाइफ से रियल बन सकती होती, पता नहीं, शायद बन जाती, यू नेवर नो। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको आज की जोड़ी का एक और गीत सुनाने वाली हूँ। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मुझे प्यार हो गया।
1: ये था हमारे आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: और देखिए, हमारे विजय जी ने भी याद दिलाया है कि वैजयंती माला को भी संगम फिल्म में राज कपूर ने पूरी फिल्म में वाइट साड़ी ही पहनाई, और ये बात भी साबित करती है कि राज कपूर को सफ़ेद रंग से, सफ़ेद साड़ी से कितना प्यार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली मुलाकात नरगिस जी से कैसे हुई थी? और ये एक फिल्मी सीन था जिसके बारे में कई बार बात हुई है। जब राज कपूर एक फिल्म के सिलसिले में नरगिस जी की माँ जद्दन बाई से मिलने उनके घर गए थे, उस समय नरगिस जी रसोई में पकौड़े तल रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो उनके हाथ में ऑलरेडी बेसन लगा हुआ था और वैसे ही दरवाज़ा खोलने चली गई। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके गालों पर थोड़ा सा बेसन लग गया और राज कपूर उनकी सादगी और उनकी मासूमियत पर फिदा हो गए। और बाद में उन्होंने इस सीन को अपनी फिल्म बॉबी में भी डाला था, जहाँ पर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच में बिल्कुल वैसा ही सीन फिल्माया गया था। और राज कपूर को नरगिस जी उस दिन ऐसी भाई कि जब तक नरगिस जी फिल्मों में काम करती रहीं, तब तक राज कपूर की ही हीरोइन बनकर आती रहीं। और जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी रचाई, उसके बाद राज कपूर ने नूतन जी और पद्मिनी और बाकी की हीरोइंस के साथ फिल्मों में काम किया, वरना उससे पहले उनकी सारी की सारी फिल्में नरगिस जी के साथ ही थी। और इसीलिए आज इस सुपरहिट जोड़ी को हमने बनाया जोड़ी नंबर वन और याद किया नरगिस जी को।
2: This is Ritu Sharma. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Leica Extra podcast update.
1: तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ गया है और इसका टॉपिक है द UKAFF राउंड टेबल, जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने और इसमें गेस्ट है पूरी यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल की टीम। इस एपिसोड को आप देख सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर जाकर, जो कि अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price
3: at all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.

0: यश चोपड़ा की फिल्म डर से था ये गाना। शाहरुख खान और जूही चावला साथ में थे, लता जी और हरिहरन की आवाजें। और एक और अच्छी फिल्म आजकल रिलीज हुई है जिसका नाम है राजा शिवाजी, जिसे रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है और इसमें रितेश के साथ उनकी पत्नी जेनेलिया है और संजय दत्त भी है और ये शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई फिल्म है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी तो मैंने नहीं देखी है ये फिल्म, लेकिन मेरा प्लान है देखने का। लेकिन हाँ, आपको बता दूँ, फ्राइडे को मैंने माइकल फिल्म देखी, अच्छी है, मज़ा आया, लेकिन वो फिल्म पार्ट वन है, अभी पार्ट टू का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो ज़्यादा करके चीज़ें हम जानना चाहते थे माइकल जैक्सन के बारे में, वो शायद पार्ट टू में दिखाई जाएंगी। लेकिन पार्ट वन भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया देखकर। आपने देखी है क्या अब तक वो फिल्म?
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आपको बता दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 1.3 US dollars, 128 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Like Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 109.35 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Laika Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में IPL का मैच शुरू हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 113 रन बना लिए हैं, 2 विकेट उनके जा चुके हैं और 10.2 ओवर्स अब तक फेंके जा चुके हैं। आगे का हाल जानने के लिए हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: Laika Gold.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344, a 24-hour line.
7: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, sham 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
8: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
4: London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
10: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
11: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
12: A story full of heart, now on the big screen.
13: ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
10: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
12: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
14: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
15: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all, and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom, and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
1: Leica Radio Network. Proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app for details. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Leica Gold Greater London.

0: 80s के दौर में आरी बर्मन ने जो म्यूजिक बनाया वो कमाल धमाल बेमिसाल था और हर किसी को अपनी धुनों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया, और ऐसा ही था ये गाना। फिल्म जमीन आसमान से लिया था, और आपको बता दें कि बस इस गाने के बाद हम चलने वाले हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में, जिसमें थ्री वर्स गेम होगा, कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी सुनवाऊंगी। लेकिन हमारे विजय गुडोरी जी ने कहा है कि वो आज शाम को माइकल फिल्म देखने जा रहे हैं, तो ज़रूर देख कर आइए, मज़ेदार फिल्म है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और सेकेंड पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और वो जल्द से आ जाए तो अच्छा है। अब पता नहीं 2-3-4 साल लगा दिए तो फिर तो क्या कह सकते हैं, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ललित छत्री साहब जी कहते हैं कि शो में मज़ा आ रहा है, थैंक यू, स्वागत है आपका। बानू जी, जय जालाराम, जय राम राम जी, जय हनुमान, क्या बात है, आप हमारा साथ सुन दे रही हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। हरिश्रद्धा जी, थैंक यू। और आजकल जो फिल्म आई है ना राजा शिवाजी, ये भी अच्छी फिल्म है, इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि अच्छी देखने लायक फिल्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर ये फिल्म बनी है, और ऐसे महान इंसान के जीवन पर एक अच्छी फिल्म बनाना आसान नहीं है, और ये काम किया है रितेश देशमुख ने, आई थिंक जिन्होंने पहली बार शायद डायरेक्शन किया है, लेकिन फिल्म में अच्छा काम है, और संजय दत्त का काम भी काफ़ी सराहा जा रहा है। अब आजकल देखिए अच्छी फिल्में बन रही हैं ताकि लोग अपने इतिहास को जान पा रहे हैं, खास तौर पर जो आज की जनरेशन है जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ऐसी फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए ताकि वो अपने भारत के महान योद्धाओं के बारे में जान सके। चलिए मिलते हैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और बस खेलेंगे थ्री वर्ड्स गेम, सुनेंगे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: From the Sky News Centre at midday, a major incident's been declared after two people died in an explosion at a property in Bristol. Police were called to the address in Stonecourt Road around 6:30 this morning and evacuated residents living nearby. Plans to keep Britain flying this summer have been set out after concerns about a possible shortage in jet fuel due to the ongoing war in the Middle East. The government says airlines will be allowed to group passengers from different flights onto fewer planes to avoid carrying empty seats. The Transport Secretary thinks Zach Polanski is not fit to lead the Green Party because of his criticism of the handling of the arrest of the Golders Green suspect. Two Jewish men were stabbed in North London on Wednesday. Heidi Alexander says the Green leader retweeting a post suggesting officers were heavy-handed was disgusting. Jewish author Melanie Phillips agrees.
3: I think he is a menace to public safety. He is using his Jewish ancestry as a shield to protect him from what he's doing. He himself is inciting hatred.
2: Mr. Polanski's apologized for sharing it on social media. Donald Trump has threatened to withdraw more troops from Germany on top of those already being redeployed. The US president's already ordered 5,000 personnel to be withdrawn from the country as part of a dispute with the German chancellor. Military analyst Sean Bell says the move shouldn't have a huge impact.
4: US forces number about 68,000 total across about 12 countries of Europe. And it's not the first time that President Trump's threatened to reduce the numbers. In his first term, he threatened to reduce them by 10,000. That didn't materialize.
2: Two women have died while trying to cross the English Channel in a small boat carrying around 80 people. Three other passengers are reported to be in a critical condition. And Celtic are looking to move joint top on 70 points as the battle for the Scottish Premiership resumes. But they have to beat Hibs at Easter Road in the midday kickoff. That's the latest.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
5: From the case files of Miss Maureen 118212, the case of the replacement rodent.
6: A woman called asking for the number of a pet shop. She needed a new hamster before her son returned from school. I didn't ask what happened to the original hamster. Best not to know some things.
7: Maureen! 118212!
5: For directory inquiries, call Maureen on 118212. Calls cost £2.50 per call plus 75p a minute with a minimum 1 minute charge plus your phone company's access charge.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: गुड आफ्टरनून, चलिए बात करते हैं मौसम की, और आज मौसम में बादल छा जाएंगे, दोपहर के बाद कभी कभार कुछ सनशाइन देखने को मिलेगी और कभी कभार थंडर के साथ बारिश भी हो सकती है। लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री तक रहेगा। मैनचेस्टर में हल्की बारिश होने की संभावना है, मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री तक रहेगा और मिडलैंड्स में आज 17 डिग्री के आसपास रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
8: Ye hai Like a Gold.
1: Flight updates brought to you by Brightsun Travel. Make travel fun. Book with Brightsun. Like a gold.
0: चलिए फिर बात करते हैं चेन्नई से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA036 की। अराइवल टाइम है इसका 10:10, लेकिन अपने समय से काफी देरी से, यानी कि 3 बजे के आसपास ये फ्लाइट लैंड करेगी हीथ्रो टर्मिनल 5 पर।
1: Celebrating Brightsun Travel's 40th anniversary. Brightsun are giving £40 off per adult on hand-picked holidays, plus upgrades, kids stay or eat free offers, free tours and transfers and more. Visit the website for details at brightsun.co.uk/40. Ritu Sharma.
0: Yes, स्वागत है आपका प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में और आपने सही सुना, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पर। अगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो 2 घंटे में बजने वाले गीतों को आपने मिस कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस आवर में साथ दीजिए।
8: Like a
1: gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
9: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
10: Travel Hub.
9: At all protected.
1: Leica. Ritu Sharma live on Leica Gold, Greater London.

क्या म्यूजिक बनाया है जतिन ललित ने, कमाल का। 1995 में ये फिल्म आई थी और मुझे लगता था कि इस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जतिन ललित को अवार्ड मिलना चाहिए था। फिल्म सुपर डुपर हिट, गाने आज तक हिट, लेकिन फिर भी इसे अवार्ड नहीं मिला। वो जानते हैं 1995 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था एआर रहमान को फिल्म रंगीला के लिए। और अब आप ही सोचिए कि रंगीला और दिलवाले दुल्हनिया में से किसके गाने डिजर्व करते थे अवार्ड। मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या किया जाए, दिलवाले दुल्हनिया लाए ले जाएंगे कि गाने आज भी पॉपुलर है और हमने आपको सुनवाया। और देखिए जतिन ललित ने कितनी वाइजली उस जमाने के जो बेस्ट सिंगर्स थे उनकी आवाज़ों को यूज़ किया है। तीन गाने उदित जी ने गाए हैं जो उनकी आवाज़ में परफेक्ट फिट है, एक गाना कुमार सानू ने गाया है और एक गाना ये अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है। और इसी तो को तो कहते हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्हें पता रहता है कि कौन सा गाना किस आवाज़ में अच्छा लगेगा। कमाल की फिल्म, कमाल का गीत आपने सुना, और उससे पहले राम बलराम का गीत किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में। प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, मतलब प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हुई है, और ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ इस वाले आवर में। और ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस आवर में आप जानते हैं ना क्या होता है, मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आंटी जी स्वागत है आपका। कहती है मैं थोड़ा लेट हो गई, घर में मेहमान आ गए थे। कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस लग गई, अब आप मतलब पास होंगी ही होंगी, आपने अटेंडेंस जो लगवा दी है। ज्योति गिरीश साहब भी हमारे साथ है, भानु जी हमारे साथ है, थैंक यू जो भी साथ दे रहे हैं। तो चलिए सब तैयार हैं आज के थ्री वर्स जानने के लिए। इस आवर में हम गेम खेलते हैं और सुनवाती हूँ आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं जो मैंने बॉलीवुड

0: ये गाने से पिक किए हैं, 1966 की फिल्म है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और लता जी की आवाज़ है। याद रखिए 1966 की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक और लता जी की आवाज़। पहला वर्ड है नज़ारा, दूसरा वर्ड है सहारा और तीसरा वर्ड है ऐसा। सोचिए कौन सा है ये गाना, नज़ारा, सहारा, ऐसा। 1966 की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, लता जी की आवाज़, कौन सा है ये गाना? पता है तो अपना मैसेज हमारे जरा इस नंबर पर भिजवाना।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Like a Gold.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच है और ये मैच हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जालमी के बीच में है। 4 बजे से शुरू होगा मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमें सुनते रहिए।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: at all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture. Now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
11: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
10: एक यू हार्ट जी कई फील करतू नतू।
11: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
10: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
12: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
10: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई।
13: लोकेशन अहीना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
10: इन सिनेमास नियर यू।
14: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ कोई पता चला?
15: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
14: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
15: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ गोल्ड। इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
17: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
18: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
17: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
19: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
20: Call 01923 883 100. Atoll protected.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम।

0: क्या धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। और आप जानते हैं कल्याण जी आनंद जी ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और ये गाना था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना। और सही कहा विजय जी आपने कि रफ़ी साहब और शम्मी कपूर का जो कॉम्बिनेशन था ना, अनबीटेबल था। जो गाने रफ़ी साहब के शम्मी कपूर के ऊपर पिक्चराइज हैं, ज़्यादातर सारे के सारे सुपर डुपर हिट हैं, और ये गाना भी उनमें से एक था। और चलिए अब सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: ये है Like a Gold, Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आशा जी के आवाज में लाजवंती फिल्म से था ये गाना, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, जिसमें नरगिस जी थी, साथ में थे बलराज साहनी। और मैंने आपको बताया कि आज नरगिस जी की पुण्यतिथि थी, आज ही के दिन सिर्फ 51 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर गई थी। उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन नरगिस जी ऐसा नाम कि जब जब म्यूजिक के चाहने वाले रहेंगे, तब तक नरगिस जी हमेशा लोगों को याद रहेंगी। एक कमाल की एक्ट्रेस थी और उनके ऊपर बहुत खूबसूरत गाने पिक्चराइज किए गए हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई हमारा थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने आज के गाने को सही पहचाना है। इनफैक्ट ज़्यादातर सभी ने सही पहचान लिया है। तो जिन्होंने सही पहचाना है उनके नाम है उल्लास, विजय गुडूरी जी, नरेन पटेल, हाजरा, राजीव पटेल, करसन पिंडोरिया, भरत गंगाराम, सरोज जोशी लुटन से, अमर जी, दामिनी बेन, दिनेश पोपट जी, उषा खोड़ा, मनीषा शाह, शमीम शफीक, विनोद जी, गीता जोशी, सहर एंड ऑफ कोर्स हमारी तोशी जी, सभी ने गाने को सही पहचाना है। गाना कौन सा है सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और गीत हो जाए।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लव इन टोक्यो फिल्म से था ये गाना, शंकर जयकिशन का म्यूजिक। और ये थी हमारी आज की थ्री वर्ड्स गेम वाली फिल्म, थ्री वर्ड्स गेम के गाने वाली फिल्म, जिसमें जॉय मुखर्जी और आशा पारेख ने काम किया था। दिव्या जी, हैरो से आपका भी मैसेज बिल्कुल सही मिला है, बस ज़रा देर से मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम श्योर आपने इस गीत को पसंद किया होगा। उस ज़माने में ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और गाने भी काफ़ी पसंद किए गए थे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 1.3 US डॉलर्स, 128 भारतीय रुपए, 378 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 109.35 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
4: Hai
5: like a gold.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
5: Leica Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज आईपीएल के दो मैचेस हैं, एक गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में है जो दोपहर के 3 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 19 ओवर में 165 रन बनाए हैं और उनके सारे विकेट्स गिर चुके हैं। अब देखते हैं उनके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करते हैं। मैच कहाँ जाने के लिए आप हमारा साथ देते रहिए।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और बस अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक, न्यूज के उस पार Leica Gold पर आपके साथ होंगे अनुराग, Leica Radio Manchester पर फजीला आपके साथ होंगी और Leica Radio Midlands पर अनिका आपका साथ देंगी। लेकिन आपको बता दें कि आप नॉनस्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है Leica Gold 2। अगर 90s के गीत सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं Leica Radio 90s Online। और अगर आप पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं ऑनलाइन Leica Radio पंजाबी। और इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर, यानी कि हमारी वेबसाइट या हमारे Leica Radio ऐप पर जाकर आप इस प्रोग्राम को दोबारा अपने कन्वीनियंट टाइम पर कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा और आपका साथ यहीं तक। ये लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि कल भी छुट्टी है, तो मजे के साथ अपना लॉन्ग वीकेंड मनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे को। यस, संडे को होगी हमारी और आपसे फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मेरी ओर से बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
5: ये है Leica Gold.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
9: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
10: Dil diyan gallan
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: लता जी की आवाज़ में ऐसा समा ना होता। वैसे समा तो बना दिया आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश भेजकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज सुपर संडे वाली महफिल में दो गाने बैक टू बैक हमने आपको सुनाए। थोड़ी देर में आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा हमारे चुने गए आज के गोल्डन वर्ड से जुड़े हुए गानों का की लिस्ट। आप अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर लीजिए, हम आपको क्ल्यू भी देते रहेंगे बीच बीच में और बताते रहेंगे आज के IPL और PSL का ताज़ा अपडेट। आगे बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाते हैं जो कल रह गया था मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ में। गेस कीजिए, इस गाने को लेकर भी बहुत सारे वोट हमें रिसीव हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 रुपीस। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड।
0: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: तो भाई महामुकाबले के लिए हो जाइए तैयार, जो कि होगा दोपहर 4 बजे के आसपास। फाइनल मुकाबला लाहौर में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जर्मी के बीच।
0: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो मैंने कहा था ना कि आपको ये गाना मैं आपको सुनाऊंगा जो कि रह गया था कल मुकेश साहब और लता जी की आवाज में अपलम चपलम फिल्म का ही गाना। अब बात चंदा की रात की हो रही तो एक बार और रात का सफर कराते हैं आपको दिन में ही गोल्डन रा की सुपर डुपर संडे वाली इस महफिल में। सुनते रहें अगला गाना किशोर दा की आवाज में, रात का एहसास दिलाएगा आपको।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। मैं जब ये लाइन सुन रहा था मुझे लग रहा था यार क्या गला किशोरदा को दिया था ऊपर वाले ने और क्या सुर निकलते थे बिना किसी ट्रेनिंग के। इतना महान कलाकार सालों सालों तक वर्षानुवर्ष तक उसने हिंदी सिनेमा की सेवा की और हमें इतने खूबसूरत गीतों का तोहफा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपको सुनाएंगे एक बार फिर से किशोरदा की आवाज़ में, लेकिन साथ में होगी खनकती हुई आवाज लता जी की भी।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: भाई आवाज और गले की बात हो रही है तो फिर किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू यानी कि सानू दा यूके में एक नाइट के लिए पधार रहे हैं और ये सुपरस्टार सिंगर आपको अब से मुखातिब होगा रॉयल अल्बर्ट हॉल बैंक हॉलिडे के मौके पर 25th में। अपने टिकट पाने के लिए आप टिकट मास्टर पर जाकर विजिट कर सकते हैं और हमें यानी कि एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
3: Laika Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: मुझे तुम याद करना और मुझे तुम याद आना तुम। चलिए यादों के झरोकों को एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको। मशाल फिल्म का ही गाना सुन रहे थे आप, और अगला गाना सुनने के लिए कुछ वैधानिक चेतावनी आपके लिए। ये गाना सुनने के बाद आप लोग यकीनन अपने घर की अलमारियों को खंगालेंगे, अपने बेड के स्टोरेज को देखेंगे कि कहाँ रखा है हमने वो कीमती सामान, यादों का झरोका किस कोने में दबा कर रखा है जिस पर धूल मिट्टी भी जम रही है, और आज वो दिन आ गया है उसे उस तह से, उस लिहाफ से निकाल कर अपने हाथ में रखने का और उन पुरानी यादों को जीने का, क्योंकि ये गाना आपको यकीनन ये सब करने पर मजबूर करवाएगा। थोड़ी देर में सुनाएंगे, क्योंकि ये गाना एक इतिहास के बराबर है। सुनते रहें।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है। फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस ABPD अवार्ड्स UK 2026। लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स। 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल। फॉर टिकट्स कॉल मंजीत भमरा एट 7956300367। ABPD अवार्ड्स UK 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। यूज variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. iTech at unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
8: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
9: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
10: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st मई।
11: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
12: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए।
13: अरे समझो, हो गया। रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी। सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ। रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी।
14: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: रफी साहब की आवाज में सूरज फिल्म का गाना है। इसी गाने का जिक्र कर रहा था कि भाई आपको अपनी अलमारियों को खंगालना पड़ेगा, अपने बेड के स्टोरेज में जाकर ढूंढना पड़ेगा। और किस चीज को ढूंढने की बात हो रही थी? वो आपकी शादी के एल्बम्स। मैं यकीन मानिए, क्योंकि जो ऐसी कोई ही शादी होगी जिस शादी में, ख़ासतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की शादियों में, इस गाने के बिना किसी की शादी मुकम्मल हुई हो। मैंने तो एक रील में चाइनीज़ शादी में भी एक चाइनीज़ दुल्हन को इस गाने पर एंट्री करते हुए देखा था। कमाल की बात है। और ये गाना इतिहास क्यों है? इसीलिए है क्योंकि किसी भी खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर इस गाने को अगर हम ना सुने तो वो जश्न अधूरा सा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के बाद आपको बताएंगे, आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। तैयार हो जाइए दिमाग की बत्ती चलाने के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए मन पाउंड के बदले यूरो और बाकी का अपडेट आपको थोड़ी देर में देते हैं। हम फिलहाल आपको गोल्ड रेट्स की तरफ ले चलते हैं।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL 2026 का 45वां मैच इस वक्त खेला जा रहा है हैदराबाद में और सनराइजर्स हैदराबाद ने लक्ष्य दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स को 165 रनों का, जहां पर लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10.0 यानी कि 11 ओवरों में 110 रनों का लक्ष्य बना भी लिया है। भाई स्कोर खड़ा भी कर दिया, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं। अगला मुकाबला 3 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के दरमियान।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: मुकेश साहब की आवाज में कभी कभी फिल्म का ये प्यारा सा नगमा हमने आपको सुनाया, और इसी साथ बता दें कि आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है भूल। याद रखिए BHOOL भूल। उससे लेकिन वो गाने आप हम तक भेजना मत भूलिएगा, जल्दी जल्दी।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100,
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी एक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी।
10: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
9: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु, बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
11: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे।
9: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
12: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
13: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for 2 to Barcelona, a Michelin star dinner for 2 people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: On Rug with Golden Rug.

0: कहो कैसे रास्ता भूल पड़े भाई, किशोर दा और लता जी की आवाज में बड़े दिल वाला फिल्म का ये गाना, और ये गाना किसी ने हम तक नहीं पहुंचाया, ये हमने गोल्डन राग की तरफ से सुनाया। और लम्हे फिल्म का गाना जो कि आज की थीम को, यानी कि आप बताएं और हम सुनाएं, और दिमाग की बत्ती जलाए वाली थीम का गोल्डन वर्ड है, और वो है भूल। लम्हे फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया सुमित चौरसिया कंचन जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन अब आ रहा है जो गाना, इस गाने को सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं। भाई क्या बात है इस गाने में, थोड़ी देर इंतज़ार करें और सुने। सुपर संडे वाली महफिल आपके लिए जारी है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले 128 रुपीस इंडियन रुपीस में, याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: Like a Gold
1: Pakistan Cricket Score Updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: बस थोड़ी देर बाद यानी कि 4 बजे हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जलमी के बीच फाइनल महामुकाबला शुरू होने वाला है।
1: Pakistan Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Like a gold.
2: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions

0: बासमती राइस। दिशा बासमती राइस अवेलेबल एट कच्चा बाजार व्हाइट चैपल एंड बेक्टन ब्रांच।
1: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
2: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
3: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
4: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1 मई।
5: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
6: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
5: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
6: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
7: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे। Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Kishore Da aur Lata ji ki awaaz mein Jhooli film ka ye gaana. इतने सारे लोग सुनना चाहते थे, लगता है भाई सब आज रोमांटिक मूड में हैं। चलिए नाम लेते हैं कौन कौन है। मनु जी, संतोष जी, उल्लास जी, निर्मला जी, फरीदा गुलाम अली जी, हितेश कुमार साहब, सरफून जी और हसुमती जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को पहुंचाने के लिए हम तक। लेकिन अगला गाना किशोरदा की आवाज़ में आ रहा है, लेकिन इस गाने को आप लोग ध्यान से सुनिए। कई बार सुना होगा इस गाने को, लेकिन ये गाना होता है जब हम आपको थीम बताते हैं, आप बताएं हम सुनाने वाली थीम का कोई गोल्डन वर्ड, तो इस तरह के गाने आप चुने तो बड़ा मज़ा आएगा, जहां पर वो गोल्डन वर्ड बीच में कहीं इस्तेमाल होता हो। ये गाना एकदम आइडियल आज के थीम को मद्देनजर रखते हुए सुनते रहें। किसने भेजा बताते हैं थोड़ी देर में।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जमाना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: रूप तेरा मस्ताना भूल मुझसे न कोई हो जाए, किशोरदा की आवाज में आराधना फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था। इसी गाने को कह रहा था, बड़ा आइडियल गाना है आज के लिए। और ये गाना हम तक पहुंचाया था अमित पटेल जी और पंकज वर्मा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना सुनाने से पहले
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: फ्रेंकी गोज टू बॉलीवुड, द स्टेज म्यूजिकल फ्रेंकी गोज टू बॉलीवुड इज टूरिंग द यूके। लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स। गेट योर टिकट्स फ्रॉम rifcotheater.com। राग हसन, लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड राग हसन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
4: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: अनुराधा पौडवाल और सानू द स्पेशल आशिकी फिल्म का ये खूबसूरत गाना हम तक पहुंचाया था राजेश जी, राजू कंदुकुरी और सुमन दुबे जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना आने से पहले हमारी इन हाउस इन्फॉर्मेशन आपके लिए।
1: ये है लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का अपडेट आपके लिए हाजिर। इस बार का एपिसोड 14 द यूके एएफएफ राउंड टेबल होस्टेड बाय रूबी रजा। टीम मेंबर विल बी होंगे एशियन फिल्म फेस्टिवल के, और जो कि फ्रॉम मे 1st टू 10th मे तक चलेगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्सना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
6: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
5: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
6: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
5: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
7: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
8: लोकेशन अहींना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
5: इन सिनेमास नियर यू।
9: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
10: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
11: Oh, Julelal Kalandar, mast, mast, dam, mast, kalandar, mast.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube, prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
18: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
17: Call today on 01923-883-100
18: or go to skylordcruiseandholidays.com.
17: Book with confidence.
18: We're at all protected.
19: save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
21: It's such a pleasure to welcome the team of the UK Asian Film Festival.
22: What is particularly very touching for me, a lot of these films will never see the light of day. They won't get distribution. So you miss them at these festivals, it's gone.
20: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। दीदी फिल्म का ये विंटेज गोल्ड वाला गाना हम तक पहुंचाया था करसन पिंडोरिया जी और रंजना जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले Indian currency में 128.87, Pakistani rupees में 379.02, Sri Lankan rupees 433.81, Bangladeshi taka 166.78 and 1 US dollar 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है
5: लाइका गोल्ड।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली, ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: केकेआर वन द मैच बाय 7 विकेट्स। 10 बॉल रहते ही भाई 18.2 ओवर्स में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना लक्ष्य पूरा किया और दूसरे मुकाबले के लिए हो जाइए आप लोग तैयार। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान 3 बजे, थोड़ी देर में।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA। LYCA। दिस इज लाइक

0: लता जी की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना भी आपने सुना। 1968 में ये फिल्म आई थी। कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत संगीत और बहुत ही कमाल की अदाकारा नूतन जी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आई थी। और ये गाना हम तक पहुंचाया था किसने, हाँ सुमित जी और राजू। राजू जी आपका ये दूसरा सॉन्ग हो गया आज के दिन का, गलत बात है, चीटिंग नहीं चलेगी। और समद जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और अगला गाना हम सुनाने जा रहे हैं साथ ही फिल्म से दिनेश पोपट जी, और ये गाना जगदीश जी प्लीज़ सुन लीजिए हमारी तरफ से, क्योंकि अब एक भी गाने की गुंजाइश बची नहीं है आज के शो में, इस घंटे में खासतौर पर।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड
2: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.

0: Fatco microwave food containers.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
5: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
10: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
11: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
10: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
11: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
10: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
11: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
10: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
11: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
12: કાશ્મીરા મેરી હો જાય ચાહે એક દિન કે લે સહી.
13: એક મિનિટ કે લે મેરે આંખો મેં દેખો.
14: A story full of heart, now on the big screen.
15: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है.
12: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहे.
14: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
16: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ।
17: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
18: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
19: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें Leica Radio Sales on 0207-132-1458 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
20: On Rug with Golden Rug.

0: डांस करने का नहीं, जिमी जिमी बनने का भी नहीं। अब वक्त आ गया है आपको आज के गोल्डन रॉ के तीन ऑप्शंस बताने का, जिसके कायदे प्लस कानून ये है कि हम आपको तीन ऑप्शन देंगे ए बी एन सी। जिस भी ऑप्शन को आप दिली तौर पर पसंद कर रहे हो उसे वोट की तरह कास्ट करें, और जिस ऑप्शन को लेकर हमें सबसे ज़्यादा वोट्स रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का गोल्डन राग। जी हाँ, तो चलिए पेश खिदमत है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, फिल्म का नाम है नील कमल, और इसके साथ ऑप्शन बी है थोड़ा सा इमोशनल सॉन्ग दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, फिल्म का नाम है गंगा जमुना, और ऑप्शन सी है तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान लगाकर सुनिए। ऑप्शन ए है आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार फ्रॉम द फिल्म नील कमल, ऑप्शन बी है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, फिल्म का नाम है गंगा जमुना, ऑप्शन सी है तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। अपने वोट करना कास्ट करना शुरू कर दें क्योंकि वोटिंग लाइंस शुरू हो चुकी हैं नाउ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 रुपीस। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो क्या फाइनल PSL के मुकाबले के लिए तैयार हैं आप लोग, जो कि शुरू होने वाला है अगले 44 मिनट में, 44 मिनट्स में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर जलमी के बीच फाइनल मुकाबला।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Sabrang Arts presents Ramjhat in association with Leica Radio Network on Saturday 30th of May at 7 PM. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976869444.
8: Location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 0203963 5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.

0: Why?
1: Search is changing.
2: Customers aren't just using Google anymore.
1: They're asking AI.
2: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
1: One business, one recommendation.
2: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
1: Will your business be the answer?
2: Or the one that got left behind?
1: The future of search has already started.
2: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
1: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
7: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
8: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही.
9: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो.
10: A story full of heart, now on the big screen.
11: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है.
8: पर कल तो मैं ये दिन याद नहीं रहे.
10: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना हमने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इस गाने और इस फिल्म के लिए संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी, जो कि है हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, वोटिंग लाइंस ओपन हैं, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। जिन लोगों ने वो ऑप्शंस नहीं सुने हैं फिर से सुन लें। ऑप्शन ए है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, फिल्म का नाम नील कमल। ऑप्शन बी है, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, फ्रॉम द फिल्म गंगा जमुना। और ऑप्शन सी है, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में, फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। वोट करते रहें, जब तक है मौका लगाते रहें चौका। अगला गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Disha Basmati Rice available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch.
1: Disha Basmati Rice.
2: Chalo jaiye ek nava safar par.
3: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
4: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्याने
3: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
5: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आया छे एक इमोशनल कॉमेडी एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज
6: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
9: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ खोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
10: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
11: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
12: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
13: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: प्यार कर लता जी और उदित नारायण साहब की आवाज में दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना। और अब दिल को रखिए काबू में क्योंकि हो चुकी है वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। थोड़ी देर में आपके साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहा है 128.87, पाकिस्तानी रुपीस में आपको मिलने जा रहे हैं 379.02, श्रीलंकन रुपीस 433.81, बांग्लादेशी टका 166.78 एंड $1
2: 1.35। रेडियो। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.35 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: ये है लाइका गोल्ड।
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: IPL का 46 मैच जो खेला जा रहा है इस वक्त अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान, जहां पंजाब किंग्स की हालत खराब 8.4 ओवर्स में 47 runs and 5 wicket का नुकसान भैया।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: भाई वक्त का मैं इसलिए सिर्फ नाम लेकर जा रहा हूँ, अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। रानी, सुनाहे जी, मितुल पटेल, मनु, हना, अमिता, रोशनी, सलमा जी, भारती जी, कमल प्रसाद, विजय घुनोवा, सौरभ, पूनम, ये भी गाना शामिल है क्योंकि टाई हो गया है आज का मैच। और इस गाने को हम तक पहुँचाया था संतोष जी, नीता जोशी, मिसेस इकबाल बेगम, हंसुमती जी, इतीश कुमार, ज्योति गिरीशा, निर्मला जी, रेणु वशिष्ठ, जयश्री, जहीर खान, राजेश एंड कंचन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए, हमारा दिल जीतने के लिए। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय।
1: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
3: Call 01923 883 3100. Atoll protected.

भाई मुझे पता नहीं आप किसका नाम पूछ रहे हैं, मैं अपना बता सकती हूँ। मेरा नाम है सरिता सबरवाल, आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ एवरी सैटरडे एंड संडे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारे मिलने का समय है। और इस दौरान मेरी कोशिश ये रहती है अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन कर पाऊँ, आपको खुश कर सकूँ, आपकी कुछ यादें ताज़ा करा सकूँ। ये फिल्में जो आपने देखी और इन गीतों को खूब गुनगुनाया, उन गीतों के ज़रिए आप उस पुराने वक्त को भी याद करें। तो सबसे पहले तो यही पूछूं कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। By any chance, if you're not feeling too well, get well soon. If you're feeling bit low, तो come on, cheer up. Life is to live, life is to enjoy. जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गाने चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके दिल को भा जाएं, आपको पसंद आ जाएं, बस यही मैं चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया फिल्म बेटा के एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म बेटा कब आई थी भाई? फिल्म बेटा रिलीज़ हुई थी 3 अप्रैल को 1992 को, और इंद्र कुमार जी ने बनाई थी ये फिल्म। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरुणा ईरानी ने काम किया था। एंड वो था कि अनिल कपूर जो है वो बेइंतहा

0: including Best Film, Best Director, Best Music Director Anand Milan, and won a leading 5 awards including Best Actor Anil Kapoor, Best Actress Madhuri Dixit and Best Supporting Actress Aruna Irani. So itni best film ho to क्यों छोड़ो, नहीं देखिए तो आज ही देखिए. अब इस गीत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने का एक मतलब और भी था. जब ये सीडी या जब ये म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त ये गाना बड़ा फेमस हुआ था जो आपने अभी अभी सुना, नॉट सागर का गाना. उससे पहले जो गीत सुना था, कितना प्यारा ये चेहरा, तो वो गाना काफ़ी मशहूर हुआ. लेकिन जब फिल्म देखने गए तो फिल्म में था ही नहीं, फिल्म में वो गाना नहीं था. द साउंड ट्रैक ऑफ बेटा वॉज द सेकेंड बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर. आनंद मिलन वो नॉमिनेटेड, जैसा कि मैंने बताया, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बट लॉस्ट अगेंस्ट नदीम श्रवण, जिनका दीवाना का गाने भी बहुत अच्छे थे. एंड इस फिल्म का धक धक करने लगा तो बहुत. फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था अनुराधा पौडवाल को फॉर धक धक करने लगा, और बहुत फेमस हुए थे गाने सारे के सारे इस फिल्म के. अब फिल्म देखिए, मुझे बताइए ये गाना था या नहीं था, क्यों मैंने ऐसे तो नहीं कहीं कह दिया. तो अभी नहीं फिल्म देखना, अगर देखना भी शुरू करें तो आंखें हो सकती हैं स्क्रीन पर, लेकिन कान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रहेंगे, ठीक है ना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं कहीं भी इन इंडिया, तो आज आपको बहुत अच्छा रेट भी मिल रहा है और काम भी बड़ा आसान है. ट्रांसफ़र वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप. और आज का रेट है 127 rupees and 95 paisa अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भाई, पाकिस्तान में आज मैच हो रहा है सुपर लीग का, हैदराबाद किंग्समैन एंड पेशावर जलमी के बीच. और जलमी चोज टू फील्ड एंड हैदराबाद किंग्समैन ने बना लिए 8 रन और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है और 0.5 बॉल्स ओनली अभी तक.
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
8: 02085748410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati Rice. Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
1: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
1: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination. A story full of heart, now on the big screen.
2: ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूत दिन है।
3: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहे।
0: Aamir Khan presents एक दिन is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
4: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
5: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
6: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
5: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: लाइक अ रेडियो नेटवर्क proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app for details.
8: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
7: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। आशा भोसले एंड कुमार सानू की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म सलामी। अयूब खान ने इस फिल्म में काम किया था, कबीर बेदी थे, साई जाफरी थे एंड रोशनी जाफरी, एंड नई हीरोइन थी सामी युक्ता सिंह और नदीम श्रवण का संगीत। ये गाना आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Ji haan, another beautiful song sung by Asha Bhosle ji. बहुत प्यारा गाना है और मेरे वो साथी जो बराबर मेरे साथ हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं और जिन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक पहचान लिया है क्या है आज के गीतों में कॉमन ये गीत, उन सभी के नाम और सभी साइलेंट लिसनर्स के नाम।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: अपनी अपनी पसंद भी आप लिख कर भेज रहे हैं और आपने बिल्कुल जान लिया है ठीक से कि क्या कॉमन है आज के गीतों में, बिल्कुल ठीक पहचाना. अर्जन जी, ज्योति गिरीश शाह, वत्सला जी, सलमा इन मेड स्टोन, मृदु जी, सहर, विनी विनोद, वरुण, भारती जी, उल्लास इन टोरंटो, रेनू वशिष्ठ एंड संतोष इन हैरो, इरम जी, हरीश रूटा जी, दिव्या इन हैरो, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: अब इस गीत को सुने कितना अरसा हो गया? कब सुना था लास्ट? याद है आपको? फिल्म का नाम था तुम हसी मैं जवान, 1970 की फिल्म. रफी साहब की आवाज का जादू छाने जा रहा है हमारे स्टूडियो में, नहीं

0: लगा।
1: क्या बात है, रफ़ी साहब का कोई जवाब ही नहीं। हर तरह के जॉनरे की गीत उन्होंने गाए। अब आपको चॉइस देने जा रही हूँ, दो गीतों में से एक गीत आपने चुनना है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ आपकी परछाइयां फिल्म का गीत। और दूसरा गीत है मेहताब तेरा चेहरा, लता जी एंड मुकेश जी का गाया हुआ गीत फिल्म आशिक से। कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं। और आपको मालूम है कि आपने कहाँ मैसेज भेजने, आपको बता देती हूँ।
2: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23।
1: सो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से अपने मैसेजेस भेजिएगा। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे ए, और मेहताब तेरा चेहरा बी।
2: Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: In 10 meters, take a left at the pile of washing.
4: Sorry, what?
3: At the Valley of Toy Dinosaurs, approach the kitchen with no room to cook.
4: Huh?
3: Turn right at the floor drove.
4: A floor drove?
3: You've reached chaos. Recalculating.
4: No,
3: suggest immediate course correction to IKEA for fitted wardrobes, children's storage, and cupboard organizers.
5: Find your way back to calm. Discover smart storage at your local IKEA now. IKEA, the wonderful everyday.
6: This is like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
9: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
8: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु,
9: मारी वार्ता अधूरी छे भाई।
8: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
10: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
8: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
11: लोकेशन अहीना करेला अहीज भोगवाना छे।
8: इन सिनेमास नहीं आयू।
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Chale

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: London, good news! Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full attack at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
3: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
6: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923-883-100
6: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
6: We're atoll protected.
7: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough or visit kfurniture.co.uk.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
8: लाइका रेडियो, फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: फिल्म धर्मात्मा से चुना था इस गीत को किशोरदा की आवाज में गाए हुए ये गीत आपने सुना और उम्मीद करती हूँ पसंद भी किया होगा। एंड मिसेस शेख कहती हैं कि कभी कभी का गीत सुनवा देना, तो वो गीत कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ इसलिए मैं आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितने भी गीत हैं आपको पसंद आ रहे हैं ये जानकर अच्छा लगा। और जो वोट्स पड़े हैं वो बराबर के हैं, बिल्कुल टाई है। मैंने एक चॉइस दी आपको, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, और दूसरा मेहताब तेरा चेहरा यू स्टिल गॉट टाइम। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर चॉइस, तो आई रियली अप्रिशिएट।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today. क्या कौन सी करेंसी में क्या मिल सकता है, इंडियन रुपीस कितने मिलेंगे, जरा देखें हमारी स्क्रीन पे, जरा गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है आज करेंसी का रेट। ओके, कोई बात नहीं, आई ट्राई अगेन एंड आई लेट यू नो कि क्या रेट है। राइट, एक पाउंड के बदले आपको क्या क्या मिल सकता है। यूएस डॉलर्स 1.36, इंडियन रुपीस 128.97, पाकिस्तानी रुपीस 379.20, बंग्लादेशी टका 166.86, अफगानीज 87.67 एंड यूएस डॉलर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये है करेंसी का रेट आज।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Leica.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is vakt market mein 109 pounds and 35 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. Leica Gold.
0: Another beautiful song. I wanted to play this yesterday, lekin reh gaya tha. To maine socha kyun na aaj ke program mein shamil ho jaye. Film ka naam hai Kashmir Ki Kali, 1964 mein aayi thi ye film.

0: सुभान अल्लाह, हंसी चेहरा, कितना खूबसूरत गाना।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Well, earlier on match tha Hyderabad Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders ke beech. Kolkata Knight Riders won by 7 wickets with 10 balls remaining. And now match chal raha hai Punjab Kings and Gujarat Titans ke beech mein. And Gujarat Titans they chose to field first. Punjab Kings ne banaye 163 runs and unke 9 khiladi out hue aur ab wait hogi Gujarat Titans ki.
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly. Where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: Ye hai
1: Like a Gold.
3: Like a Gold.
4: Holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
5: Mum, I'm outside.
6: Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु,
11: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
9: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
12: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
15: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
16: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1st May.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
18: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रहे छे।
19: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई उठे आप पवित्र यात्रा पर।
18: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
19: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
18: दर्शन पण अने यूरोप पण।
19: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
18: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
19: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
20: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: किस किस को पता है, जिसे भी पता है मुझे तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नज़र आता है। ये गाना आपने अगर बाजीगर फिल्म ध्यान से देखी तो क्या आपने ये गीत फिल्म में देखा था? अगर देखा था तो यू कैन ऑलवेज से कि सरिता तुम गलत कह रही हो, लेकिन नहीं देखा था तो प्लीज़ बताइए मुझे कि ये गाना आपको कैसा लगा और क्या आपने इस गीत की वेट की थी फिल्म में कि ये आएगा गाना और हम सुनेंगे। वैसे काजल और शाहरुख खान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। रानी मलिक ने लिखा था इस गीत को और फिल्म का संगीत था किसका, याद आया? आया अन्नू मलिक जी का संगीत था। एंड इस फिल्म का ये काली काली आंखें अर्न कुमार सानू हिज फोर्थ कंसेक्टिव फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक प्लेबैक सिंगर। और वैसे सारे गाने इस फिल्म के काफ़ी मशहूर हुए थे। सो ये वाला गाना जो है जो मैंने अभी प्ले किया, ये सुनने में यही आया है कि रानी मलिक का लिखा हुआ ये गाना फिल्म में नहीं था। फिल्म देखिएगा दोबारा और मुझे प्रूफ कीजिए कि सरिता तुम गलत हो। और जिनके भी मैसेजेस मुझ तक ड्रॉप हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट आवर में जिन सब ने वोट दिया था इस गीत को जो मैंने शामिल किया, मेहताब तेरा चेहरा, वत्सला जी थैंक यू, वत्सला, विलास, अमिता जी, भारती डी डी, रजिंदर एंड स्वीटी, कालरा जी धन्यवाद आपका भी, आपने भी इसी गाने को चूज़ किया था, करसान पिंडोरिया आप भी यही सुनना चाहते थे, और जिन्होंने दूसरे गीत को सुनना चाहा था वो थी रोशनी जी, रानी इंसला, रेनू वशिष्ठ, एंड जगजीत सेंगर, बहुत लंबी लिस्ट है, हना सलमा वैज आप भी सुन रहे हैं जो अलेक्सा पर हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, सहर इरम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिपिन एंड ज्योत्सना जी थैंक यू, दिनेश पोपट जी आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ज्योति गिरीश शाह आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, विजय गनोवा जी बैटरसी में प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं जल्दी से बता दीजिए, व्हाट्सएप नंबर तो मालूम है ना, नहीं पता?
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: Right, और इस आवर में कुछ एक गाने में शामिल करूंगी, नरगिस जी को याद करेंगे हम। आज नरगिस जी को क्यों याद करेंगे आप जानते हैं? वेल, इनका जन्म तो हुआ था 1st of June in 1929, लेकिन आज ही के दिन in 1981 when she was only 51 years old she passed away, she was struggling with cancer, और उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए हम उन्हें याद करने वाले हैं, तो मेरा साथ इसी तरह से देते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, £1 in British sterling today could get you how much? बता दूं आपको, आज अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यू कैन गेट मैक्सिमम 127 rupees and 95 paisa विद SBI UK। एंड अगर उनका आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है योनो SBI UK मोबाइल ऐप, तो उसके ज़रिए आप घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गो टू द ब्रांच और ऑनलाइन एज वेल।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
3: Like a Gold.
1: The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
4: भाई जिन मेरे साथियों ने वोट दिया था मैंने गाही वाले गीत को, वो भी खुश क्योंकि मैंने प्ले कर दिया इस आवर में। महेंद्र पटेल जी क्रॉयडन से जुड़ चुके हमारे साथ रेणु वशिष्ठ, रानी इंस्लाव, थैंक यू।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: जी हाँ, सरिता ही है आपके साथ इस वक्त और मेरे साथ ही अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच कि आपको सारे के सारे गाने बड़े पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं. जहाँ भी बैठे हैं बस मुस्कुरा दीजिएगा, बता दीजिए किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ बैठे सुन रहे हैं. मैनचेस्टर में हैं, मिडलैंड्स में हैं, लंदन में हैं, लंदन के आसपास के इलाकों में हैं, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इन गीतों का रस आपके कानों में ज़रूर खुल रहा है. वी आर अवेलेबल ऑन 10:35 AM DAB Alexa, Google Home and LaikaGold.com. आप जानते हैं हमारी और भी सर्विसेज हैं. Laika Radio 90s, UK's first 90s Bollywood music station है. Laika Radio Punjabi, Laika Radio, Laika Gold 2 भी available है. और फिर जब हम नहीं होते हैं कोई भी प्रेजेंटर स्टूडियो में, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक बिफोर द मॉर्निंग प्रेजेंटर गेट्स इन द स्टूडियो, आप सुनते हैं गोल्डन नाइट्स. Yes, on Laika Gold. जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ. प्रकाश सूतर जी नॉर्थ ओल्ड से आप भी आए, विभाकर स्टैनमोर से आप भी पहुँच चुके हैं, महेंद्र पटेल जी क्रॉयडन से आप भी आ गए.
3: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Laika Radio. One date only, May 25th.

0: Extra podcast update.
1: आइए भी आपको बता दें हम जल्दी से कि पॉडकास्ट में क्या चल रहा है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में एपिसोड 14 आप देख सकते हैं और उसमें दिखाएंगे क्या द यूके एएफएफ यानी कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल राउंड टेबल होस्टेड बाय रूबी रजा एंड गेस्ट होंगे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के मेंबर्स। एंड ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल आजकल चल रहा है जो 1 मई से शुरू हुआ था और 10 मई तक चलेगा। और अगर पुराने एपिसोड्स भी आप देखना चाहते हैं विल्स प्रोबेट एंड अप्रेंटिस एंड अनफिल्टर्ड द होम स्कूलिंग डिबेट तो आप एक्स्ट्रा लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे यूट्यूब पर अमेजोन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तो देखिएगा।
0: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: As fuel prices continue to rise, running costs are getting harder to ignore. So MG is making the switch to electric simpler with a £1,500 MG EV car grant, 0% APR representative and zero deposit required across the MG EV range, excluding MG IM5 and MG IM6. A smart move, made simple. Book your test drive today at mg.co.uk. MG Motor UK are a credit broker, not a lender. PCP balloon payment required for ownership, registered by June 30th. T's and C's at mg.co.uk.
3: Yeah. लाइका गोल्ड 10:35 AM
4: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: at all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
5: Save even more this weekend with bank holiday offers in the Furniture Village sale. We've added new offers on sofas, dining, beds and bedroom furniture. And that's on top of sale prices. Bank holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantrahollidays.co.uk और call 02037736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in-store on Italian beds, bedroom and dining furniture all available for immediate delivery. Buy a 3- and 2-seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough or visit kfurniture.co.uk.
11: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
12: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garlic flavors. Taste the coffee latte with a Quirk by Royal Chai, now available at all major retailers.
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
14: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
13: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
15: This is a festival that has been taking place for 28 years now.
16: We are having a big problem getting people back into cinema.
17: There is a completely different game happening behind the scenes.
15: You've had stars like Zenith Amana attend.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
18: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ना लता जी रहे जिन्होंने इस गीत को गाया, ना मुकेश जी रहे, ना ही नरगिस जी रही जिन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, और ना ही राज कपूर साहब, लेकिन अपनी यादें हमारे साथ छोड़ गए हैं, इसलिए हम आज भी इन गीतों को चेरिश करते हैं। ये मत समझिएगा कि विंटेज गोल्ड प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सैंडी शाह आएंगे मेरे बाद, लेकिन हमने नरगिस जी को याद किया इस गीत के ज़रिए। नरगिस जी वॉज बॉर्न ऑन 1st of June 1929 एज फातिमा रशीद एंड हर फादर अब्दुल रशीद फॉर्मली नोन एज मोहन बाबू एंड हर मदर जदन बाई वॉज अ क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर। एंड फातिमा यानी नरगिस जी ने अपना पहला अपियरेंस जो दिया था 1935 में फिल्म थी तलाश हक व्हेन शी वॉज ओनली 6 years old क्रेडिटेड एज बेबी नरगिस। इन 1948 शी मेड हर फर्स्ट कोलेब्रेशन विद राज कपूर साहब एंड द ड्रामा आर्क। इट डिडंट डू वेरी वेल ऑन बॉक्स ऑफिस, लेकिन इनकी एक जोड़ी बन गई थी 1949 में अंदाज विद राज कपूर एंड दिलीप कुमार। फॉलोइंग दिस शी स्टार्ट इन बरसात डायरेक्टेड बाई राज कपूर। बरसात वॉज द हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1949 एज वेल एज ऑफ ऑल टाइम, ब्रेकिंग द रेकॉर्ड्स ऑफ अंदाज। अ सीन फ्रॉम द 1949 फिल्म बरसात फीचरिंग राज कपूर होल्डिंग नरगिस इन वन आर्म एंड द वायलेंट in the other arm was chosen as the basis for the logo of RK Films। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। इसके बाद श्री 420, चोरी चोरी, आवारा, मदर इंडिया, बहुत लंबी लिस्ट है। नरगिस जी ने बहुत ही नेचुरल आर्टिस्ट थी। नरगिस वॉज नोन फॉर हर फीमेल कैरेक्टर्स दैट स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद द मेल कैरेक्टर्स एंड शी मेड हर लास्ट फिल्म अपियरेंस इन द साइकोलॉजिकल ड्रामा था रात और दिन, जिसका गीत मैंने क्यों किया है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। And Nargis was married to actor Sunil Dutt, who was a Hindu. And on 11th March 1958, Nargis was also nominated to the Rajya Sabha, Upper House of Indian Parliament, from 1980 till 1981. चलिए पहले ये काम भी कर लें, फिर देखते हैं कितनी बातें और मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Write a pound in your pocket can get you today Indian rupees 128.87, Pakistani rupees 378.87, Bangladeshi taka 160.7 and Afghan is 87.60, Sri Lankan rupee 433.74 and US dollars 1.35.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKER Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate is now in the market at £109.35 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: जी हाँ, आप इस वक्त सरिता का ही साथ निभा रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं स्वर्गीय नरगिस जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। नरगिस वॉज मैरिड टू सुनील दत्त जी, हु वॉज अ हिंदू एंड ऑन 11th of March 1958, और इनका परिवार है, संजय दत्त से कौन वाकिफ नहीं है, और बेटियां भी। नरगिस वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन 1980 एंड 81, लेकिन पहले छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी इलनेस की वजह से। ऑन 2nd August 1980 नरगिस फेल इल ड्यूरिंग अ सेशन ऑफ राज्यसभा विद द विद द इनिशियल उनको ऐसा लगा था कि शायद जॉन्डिस हो गया है. शी वॉज रश्ड होम एंड एडमिटेड टू बीच कैंडी हॉस्पिटल इन बॉम्बे आफ्टर 15 डेज ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग विच ही हर कंडीशन केप्ट वर्सनिंग एंड शी रैपिडली लॉस्ट वेट. और फिर उन्हें जाना पड़ा न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में काफ़ी उन्होंने इलाज कराया एंड शी वॉज डायग्नोज विद द पेनक्रेटिक कैंसर इन 1980. और काफ़ी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई. एंड देन व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया उसके बाद भी ऐसा ही चलता रहा. अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया हर कंडीशन वर्सन एंड शी वॉज एडमिटेड टू बीच कैंडी हॉस्पिटल. नर्गिस वेंट इन टू अ कोमा ऑन 2 May 1981 आफ्टर शी बिकेम सीरियसली इल एंड डाइड द नेक्स्ट डे 3 May 1981 at the age of 51. She's known and always regarded as an actress with the range, style, grace and the incredibility, warm screen presence. So ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. और आज भी हम उनके चाहने वाले बहुत हैं. और जैसे ही मैंने कहा नरगिस जी को मैं श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ तो बहुत से मेरे साथियों ने लिखा कि हमें नरगिस जी बहुत पसंद थी. तो उम्मीद है रात और दिन का गीत जो मैंने चुना है आपको पसंद आएगा. लेकिन गीत से पहले हम सुनेंगे कुछ मैसेजेस.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Ye hai Leica Gold. Leica
2: Gold. Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

1958 में पद्मश्री से ऑनर किया गया था नरगिस जी को। 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इंटरनेशनल अवार्ड मिला, इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला फॉर मदर इंडिया एंड ऑल्सो फॉर रात और दिन।

किशोरदा एंड आशा भोसले की आवाज़ें आपने सुनी इस गीत में, जिसे मैंने फिल्म कालिया से चुना था। 1981 की फिल्म थी। और प्रोग्राम के थर्ड आवर का आगाज हुआ कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों से, और गीत था दामिनी फिल्म से, 1993 की फिल्म। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। आपके रिपीटेड मैसेजेस पहुँच रहे हैं बहुत सारे। हर गीत के बाद आप लिखते हैं कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नरगिस जी के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, तो ज्योति जी ने लिखा है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता था। थोड़ी बहुत ही मैं बात कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने का तो मौका ही नहीं मिलता है। अरे आप घर बैठे सोच रहे होंगे सरिता इतना तो बोलती है सच में, रियली आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो बता दीजिएगा मुझे। साधना भाव सर थैंक यू सो मच, रजिंदर सिंह कालरा जी, महेंद्र बरजारिया जी, भारती जी, ज्योति जी और जगतार जी, आप सुन रहे हैं वैंकूवर में हमारे प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग कहूँगी आपको क्योंकि आपकी सुबह है इस वक्त। तो थैंक यू वेरी मच कि सुबह सुबह उठ के आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। विजय गनोवा जी, हरीश रूडा, संतोष जी इनहैरो, रोशनी जी,

0: बिपिन ज्योत्सना, दिजेश पोपट जी, भरत गंगाराम जी, दिव्या इनहैरो, ज्योति गिरीश जी, करसान पिंडोरिया, वाई वाह वाह बहुत लंबी लिस्ट है। मिसेस शुक्ला, थैंक यू, जिसका नाम नहीं लिया उन सब से माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली फर्स्ट आवर में मैंने शायद आपके नाम ले लिए थे ऑलरेडी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भैया अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत काम आसान है। आज बहुत अच्छा रेट भी आपको मिल रहा है, तो जल्दी से आप पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। 127 rupees and 95 paisas मिलेंगे अगेंस्ट 1 British sterling pound, और यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK ऐप, और पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
1: Pakistan cricket score updates brought to you by Remitly. Send money to Pakistan with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: मैच चल रहा है इस वक्त और लाहौर में मैच हो रहा है हैदराबाद किंग्समैन एंड पिशावर जलमी के बीच में। जलमी नीड 124 रन्स फ्रॉम 117 बॉल्स। सो हैदराबाद किंग्समैन ने दिया था टारगेट 130 रन्स का, और पिशावर जलमी 6 रन बना चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट हो गया है इन 3 बॉल्स। सो देखते हैं कौन जीतता है।
1: Pakistan cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: 3, 2, 1, 0 percent APR on an all-electric Mini Cooper.
4: What was that, Luton?
3: Handling is extraordinary. Centre of gravity so low. And it could be ours with a 15% deposit and 3-year term.
4: Okay, Luton, reroute me to the nearest Mini retailer now.
5: Land a new all-electric Mini Cooper with 0% APR. Report to your Mini retailer today. Mini UK is a credit broker. Ordered and delivered by 30th of June. PCP finance with Mini Financial Services. Subject to status. 18 plus T's and C's apply. mini.co.uk/Cooper.
6: Sarita Summerwall with your weekend classics.
7: Like a gold.
8: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up, and
9: it could be you.
8: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 02085748410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 Our line.
13: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
14: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
13: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
14: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
13: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham.

0: भी क्या प्यार सिखाने से आता है या खुद ब खुद हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है या आहिस्ता आहिस्ता होता है, आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। एंड ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक के हमारे कल्याण जी आनंद जी थे इस हफ्ते, और मैंने ये गीत चुना फ्रॉम द फिल्म उपासना। वैसे उन्होंने बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया और बड़ा ज़बरदस्त संगीत, जंजीर का संगीत बहुत अच्छा था, हाथ की सफाई, कोरा कागज़, बैराग, हेरा फेरी, काली चरण, उपकार के गीत, सरस्वती चंद्र, ऐसे बहुत से नाम हैं जितने मुझे याद आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन उपासना का भी गाना बहुत खूबसूरत था। ये फिल्म थी फिरोज़ खान साहब की, फिरोज़ खान हीरो थे इस फिल्म के और संजय खान थे इस फिल्म में, एंड मुमताज़ थी इस फिल्म की हीरोइन। 1971 की फिल्म से मैंने चुना था इस गीत को। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया, जो कंपोज किया था कल्याण जी वीर जी शाह ने और कल्याण जी आनंद जी साथ में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: भाई मैंने पूछा था कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो लिखती हैं हमारी ज्योति जी, सरिता प्लीज़ नेवर थिंक यू टॉक सो मच, नो नो नो, इन फैक्ट लिसनिंग टू योर वॉइस इज सूदिंग, मेक्स अस फॉरगेट अवर स्ट्रेस, सो मच लव, थैंक यू सो मच।

0: फिल्म का नाम था लाड साहब, 1967 में आई थी ये फिल्म। और ये गीत महेंद्र बजारिया जी बहुत पसंद आया आपको, एंड सरिता जी आप बहुत पोलाइटली बात करती हैं, वेरी काम हैं, और आप बातें करते रहे हैं, वी लव योर टॉक, थैंक यू सो मच। ये अरुणा जी ने लिखकर भेजा, थैंक यू जी, मैं अपने मियाँ मिठू नहीं बन रही हूँ वैसे, बस आस्ते बोलती हूँ मैं, बहुत ज़ोर से, मैंने कभी आई डोंट थिंक आई हैव एवर शाउटेड ऑन इवन ऑन माई किड्स, बच्चों के ऊपर भी नहीं शाउट किया। एनीवे चलिए बता दें कि ये गाना आप तक पहुँचाया किसने,
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और भैया आपको बता दें हम कि द किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न टू द यूके फॉर वन नाइट ओनली, कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th ऑफ मे, एंड गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू और यू कैन बाय फ्रॉम टिकट मास्टर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है, लाइका रेडियो नेटवर्क। और अब जो अगला गीत मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं, उससे पहले एक और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ साझा कर लें, और वो क्या इन्फॉर्मेशन है चलो देखें ज़रा। ये है, इफ़ यू आर प्लानिंग हॉलीडे थिंक साउथ हॉल ट्रेवल, फ्लाइट्स एंड होटल डील टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई एंड माल्टीज, थाईलैंड एंड मोर, ऑल इन वन प्लेस। Call South Hall Travel on 0208-843-4444. Your one-stop travel shop. जी हाँ, अभी फोन कर सकते हैं आप, एट ऑल प्रोटेक्टेड हैं। So remember South Hall Travel.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: बहुत अरसे के बाद मैं प्रोग्राम में इस गीत को जगह दे रही हूँ, आबिदा परवीन जी की आवाज़।
4: बना रख

0: करता हूँ।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: भाई फिल्म दूर की आवाज़ से चुना था इस गीत को। सभी गाने आपके दिल के करीब हैं। थैंक यू सो मच। जिसे जो पसंद आ जाए अपने ही नाम समझिएगा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 128.82, US डॉलर्स 1.35 एंड पाकिस्तानी रुपीस 378.73, बांग्लादेशी टका 166.64, अफगान अफगानीज 87.57 एंड श्रीलंकन रुपीस 433.58.
3: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
4: LIKA Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: It's £109.35 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
5: ये है Leica Gold.
3: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: Right, भाई पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच चल रहा है इस वक्त अहमदाबाद में। पंजाब किंग्स ने 164 का टारगेट दिया एंड गुजरात टाइटंस ने 19.1 ओवर्स में 158 रन्स बना लिए हैं। दे नीड 6 रन्स इन 5 बॉल्स।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
5: ये है
4: Leica Gold.
5: Leica Gold.

रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ गीत आज और कल फिल्म से, 1963 की फिल्म थी। एंड कुछ गाने होती है ना आपको इतने पसंद होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ऑलरेडी सुना चुके हैं ये गाना। चलिए कोई बात नहीं, आज की मुलाकात भी बस ख़त्म होने वाली है, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की आपसे मैं आज्ञा चाहती हूँ। मेरी अगली मुलाकात, वैसे अब आपको एक हफ़्ता इंतज़ार नहीं करना होगा और ना ही मुझे आपसे मिलने के लिए एक हफ़्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी मुलाकात आपसे होने वाली है कल सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका साथ निभाऊंगी। रवि शर्मा जी आजकल नहीं आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और मैं उनका प्रोग्राम पेश करने के लिए उनकी हॉट सीट पर बैठने आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा भी साथ ज़रूर देंगे। मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह एक बहुत ही प्यारा विंटेज कोल्ड प्रोग्राम लेकर। इतने खूबसूरत गीत होते हैं, आपके दिल को छूते हैं, तो उनका साथ दीजिएगा। और फिर 10 बजे के बाद हमारे यहाँ से गोल्डन नाइट्स आप ओवरनाइट सर्विस सुन पाते हैं। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते और महकते रहिए। जिंदगी कहाँ किस मोड़ पर रुक जाए कुछ पता नहीं, इसलिए जो भी वक्त है हमारे पास, जो भी पल हैं, उन्हें खुशी खुशी हमें व्यतीत करना है। बाय फॉर नाउ।

0: Disha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati
1: Rice. Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
0: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: शाहरुख, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
5: Crazy for Kishore at the Prince Regent Hotel on 19th June. To book all, 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner, Laika Gold.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी।
11: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
10: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु, बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
12: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाए।
10: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू। आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
1: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
1: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
1: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे।
10: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
1: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
16: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
17: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
18: Aur kuch der theher

0: जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
1: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहे।
2: आमिर खान प्रेजेंट्स एक दिन इज नाउ शोइंग इन सिनेमास। बुक योर टिकट्स एंड वॉच इट टुडे। From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: London, good news! Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
5: सेव इवन मोर दिस वीकेंड विद बैंक हॉलिडे ऑफर्स इन द फर्नीचर विलेज सेल। वी हैव एडेड न्यू ऑफर्स ऑन सोफास, डाइनिंग, बेड्स एंड बेडरूम फर्नीचर एंड दैट्स ऑन टॉप ऑफ सेल प्राइसेस। Holiday offers end Monday at Furniture Village, an award-winning family business.
6: Leica Radio Network, proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app for details.
7: Leica Cool, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे।
6: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया. रियली ग्लैड यू आर एंजॉयिंग द म्यूजिक. आई वुडन्ट हैव इट एनी अदर वे ऑनेस्टली. सो मूविंग ऑन, गॉट अ फ्यू मैसेजेस. उसके बाद हम सुनेंगे आवाज शमशाद बेगम की. फिल्म का नाम है चांदनी रात 1949, नौशाद का संगीत. फिर उसके बाद हम सुनेंगे हेमंत कुमार और फिल्म का नाम है सैलाब 1954.
1: विंटेज गोल्ड एवरी वीकेंड विद सैंडी शाह. सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: £1 getting you 167.11 Bangladeshi taka, 128.92 Indian rupees, 379.29 Pakistani rupees, 434.74 Sri Lankan rupees and 85.9 Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold trading at £109.24 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: अब सुनेंगे आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अंबर. राज कपूर एंड नरगिस स्टार फ्रॉम 1952 हैड सम वंडरफुल सॉन्ग्स, इवन सम लवली ड्यूएट्स विद रफी साहब, पिक्चराइज्ड ऑन राज कपूर, बट दिस वन इज अ सोलो ऑफ लता मंगेशकर. एंड आफ्टर द मैसेजेस, मन्ना डे की आवाज इन वन ऑफ द फर्स्ट एवर सॉन्ग्स आई हर्ड ऑफ हिज व्हिच आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद. फिल्म का नाम होगा बूट पॉलिश, शंकर जयकिशन के संगीत पर.
0: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: Disha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati
1: Rice. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: K Furniture stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on sofas, Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy an orthopedic double divan bed for £399 and get the headboard and drawers absolutely free. Hurry, deals are on while stocks last. K Furniture stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रह्यो छे।
8: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय उठे आप पवित्र यात्रा पर।
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
8: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण।
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
10: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
11: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1st May।
12: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
13: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
12: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: So midway through the show, time for a couple of rare tracks. अब आप सुनेंगे आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की फिल्म का नाम काजल 1948 एंड देन अ फर्स्ट ऑन विंटेज गोल्ड आवाज़ होगी नूर जहान की और फिल्म का नाम जुगनू 1947
1: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: अभी आप सुन रहे थे आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम था चांदनी चौक। अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज एक बार फिर, फिल्म का नाम है बादल, शंकर जयकिशन का संगीत, फ्रॉम 1951। एंड आफ्टर द मैसेजेस, ट्रूली व्हेन आई से फील गुड, इट रियली फील गुड इन कैपिटल्स। आवाज तलत महमूद की, फिल्म का नाम सुजाता।
1: विंटेज गोल्ड ऑन लाइक अ गोल्ड, क्लासिक्स टू मेक योर वीकेंड्स फील गुड। दिस इज सैंडी शाह ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: Vintage Gold with Sandy Shah.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
9: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976-86-9444।
10: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
11: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
12: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। Releasing in cinemas on 1st May.
13: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in store on Italian beds, bedroom and dining furniture, all available for immediate delivery. Buy a 3 and 2 seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough, or visit kfurniture.co.uk.
0: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Laika Gold. Another huge giveaway is coming.

0: अब हम सुनेंगे वाजी गीता दत्त और जी एम धुरानी की फिल्म का नाम शेख चिली फ्रॉम 1956।
1: लाइकर रेडियो नेटवर्क।

0: Breaker Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: चलो जाइए एक नवा सफर पर
2: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
3: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
2: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
3: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
2: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
4: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आया छे एक इमोशनल कॉमेडी एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज
5: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
7: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 02089072444 दैट्स 02089072444
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धला आम तक जुगे तक ताजी के नदी तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी केटे ताक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी केटे झम तारी जग तारी ताक नक तक ता जिन ता जिन ता जिन ता झम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिन ता झुम ता जिन ता ताक धंग धुम कड़े धंग धुम ताक धंग धुम पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग

0: Your nightly hits. Gold Nights. This is Like a Gold.
1: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: काश मीरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
5: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
0: A story full of heart, now on the big screen.
5: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
4: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
0: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
6: Mom, I'm outside.
7: Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@likeradio.com.
11: Like a Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा

0: जायका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com com

0: है लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
4: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
5: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, dam, mast.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
0: Zembe Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.